डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं।

अमाश जली को आग कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बनती है उसी को लक्ष्मीकांत कहते हैं।

बगले की खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे, लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना, लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं।

0: disco fighter. I am a disco fighter.
1: वारे मजा फाइटर
0: आ। अरा रा रा रा रा नहीं, घाम ही फुटला।

0: अगनाई गाम ही फुटला अग गाम ही फुटला अंगा लाया फुटला एक थरथराट गाम ही फुटला अंगा लाया फुटला एक थरथराट
1: तुमची एवढी आराधना केली तरी तुमचा हाच अवतार
2: रो मत गंगू ये तो दुनिया की रीत है। अरे ये दुनिया वाले न तो खुद चैन से जीते हैं न दूसरों को चैन से जीने देते हैं। आई हेट टियर्स गंगू इन आंसुओं को पोछ दो ये बहुत कीमती है रे।

0: हाय, मैं हूँ सोना महापात्रा और आप सुन रहे हैं रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।
1: नमस्कार नगरकर, माझं नाव वृंदा बाळ। तुम्ही ऐकत आहात बदलत्या नगरचे लोकमाध्यम रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज सुनता।
1: तुम्ही ऐकत आहात स्नेह वार्ता फक्त रेडियो नगर 90.4 एफएम वर।

कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बाखुदी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। सुनते रहिए रेडियो निकल 90.4 FM, आवाज तुमचा।

पल जिंदगी का बस धुआ है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

चाहते हैं, आरज़ू है, आशिकी भी अब शुरू है, आजा मन सोनिया। That's right.

0: लास्ट ब्रीथ तक गिव अप नहीं करते हैं। साधना हो गई, संधारा चल रहा है, संलेखना चल रहा है, संलेखना के 30 दिन पूरे होने आ रहे हैं। भिक्षु प्रतिमा की आराधना कर ली, 12 भिक्षु प्रतिमा की आराधना कर ली, गुण रत्न समस्त तप कर दिया, फिर भी सिद्धि नहीं मिली। गुण रत्न समस्त तप समझते हो, अंतर पांचवे महीने में 95 के अंतर, छठे महीने में 6-6 उपास के अंतर, 6 उपास करे पार ना, 4 बार होगा, अगले महीने में 7 का एक अंतर, उसके अगले महीने में 8 का एक अंतर, उसके अगले महीने में 9 का एक अंतर, उसके अगले महीने में 10 का एक अंतर, उसके अगले महीने में 11 का एक अंतर, उसके अगले महीने 12 का एक अंतर, उसके अगले महीने 13 का एक अंतर, 14 का एक अंतर, 15 का एक अंतर, 16 का एक अंतर। और इतनी उत्कृष्ट तप आराधना करने के बाद भी कुछ सिद्धि नजर नहीं आई, तुम और मैं तो डिप्रेशन में चला जाओ, इतना कर लो, कहीं हाथ में आई हो, नो, मेंटली पन गिव अप नहीं, इमोशनली भी गिव अप नहीं, और प्रैक्टिकली भी गिव अप नहीं। 12 भिक्षु प्रतिमा कर ली, 11 अंग का अध्ययन कर लिया, जैसा प्रभु ने कहा वैसे 24 घंटे जी लिए, इसो सो इसो सुयो इसो चालो इसो चालो इसो बोलो इसो बोले, और जिसके लिए चले अब शरीर में ताकत भी नहीं रही, उठे तो भी आवाज होती है, फिर हड्डियां रह गई शरीर में, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, नोज चर्बी, अस्थि पंजर, और फिर भी केवल ज्ञान नहीं, संदेखना ले पहाड़ी पर पहुंच गए, संलेखना के भी 29 दिन पूरे हो गए, 30वां दिन चल रहा है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी नेवर गिव अप, एक पल के लिए मन में नहीं आया, नो डाउट गिव अप कब होता है, गिव अप का सिर क्या है, डाउट, रिग्रेट, तुम्हारे और मेरे जीवन के लिए रुक होने तो हो गया, मारो नहीं हुई हो, डाउट, रिग्रेट, नो रिग्रेट, नो डाउट, आखिरी सांस तक, और आखिरी सांस में केवल ज्ञान, इधर केवल ज्ञान उधर मुक्ति, ऐसी 90 सिद्धात्माएं जिनका पहला मंत्र है, कुछ भी हो जाए गुरुदेव तुम्हारी उंगली पकड़ी है, जब तक वहां तक पहुंचाऊंगे नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, तार छेड़ा है इसमें छोड़ूंगा नहीं, रास्ता पकड़ा है इधर उधर देखूंगा नहीं, क्या विश्वास होगा, क्या अटूट विश्वास होगा, क्या प्रभु के वाणी पर श्रद्धा होगी? तीर्थंकर अरिष्टवेणी ने गौतम कुमार आदि दस को कहा था, तुम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे, तुम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा वापस तुम एक बार मेरे शासन में कदम रखा है तो वापस तुम्हें किसी के अनुशासन में जाना ही नहीं पड़ेगा। द्वारिका नगरी श्री कृष्ण वासुदेव और समृद्ध नगरी ऐसी समृद्ध नगरी और ऐसे समृद्ध नगरी में अंधक वृष्णि राजा उसकी धारिणी देवी एक ही मां के एक ही बाप के ये दस बेटे हैं। जो मोक्ष में गए, जो गेट के पास पहुंचे, कौन है अंदर क्यों एंट्री वाले? ये ऐसा हुआ ना, क्या हुआ? मैंने बहनों को नहीं देखा था, तुम उधर देखते रहे, तुम उधर देखते रह गए और तुम इधर से डिस्कनेक्ट हो गए। आई रिक्वेस्ट यू, कोई आए कोई जाए, तुम्हारी नजर उधर क्यों ले जाते हो? तुमने उधर न देखा होता तो मैंने तुमको देखा ही नहीं। नो गिव अप की बात चल रही है, और तुम लोग एक घंटा भी नो गिव अप का नियम नहीं निभा सके। ये आराधना करनी है कि केवल श्रोता बन करके बैठना है? ये परिश्रम पूर्वक की आराधना के लिए आया हूं कि फिर प्रवचन सुनने के लिए आया हूं? हाँ, प्रवचन तो चलते रहते हैं, प्रवचन सुनने के लिए यहां आने की आवश्यकता ही नहीं आपको। ऑनलाइन चालू है, आराधना करनी हो तो यहां आना, और प्रवचन सुनना हो तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहां इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक्सपीरियंस भी आएगा। अनुभूति लेनी है तो आराधना में होना होता है। मैंने शुरू में कहा आपको कि देवताओं को तो परमानेंट यूट्यूब है, अवधि ज्ञान लेने क्या यूट्यूब है, फिर वो नीचे आते सुनने के लिए नहीं आते, आराधना करने के लिए आते। तय कर लेना कल आते समय कि मैं आराधना के लिए जा रहा हूं, मैं आराधना के लिए जा रही हूं, और शुरू से लेकर आखिरी तक जब तक आराधना पूरी नहीं होती तब तक मैं गिव अप नहीं करूंगी। ये तो होना ही होना है, कोई ना कोई तो तुम्हारी नजर को इधर उधर खींचेगा ही खींचेगा। अभी बहनों ने खींचा, हो सकता है कि कल कीर्ति सुशी खींच ले, हो सकता है कल सती जी खींच ले, हो सकता है कल ट्रस्टी खींच ले, और तुम तीर्थंकर के वरदानों से डिस्कनेक्ट हो गए। मैंने शुरू में कहा था कि आराधना की धारा बहुत नाजुक है, कैसी है? नाजुक है, करिए कराइए सिद्ध हो जाएंगे। ये तो जन्म जन्म में मैं भी करता आया, तुम भी करते आए, जब तक चल गया इधर बेटा उधर बेटा हो गया कन्या। शंका कंखा गिचगिच्छा परपाषंड प्रशंसा परपाषंड संतो इसी में तो सारी जिंदगी बीत रही है। मैं उठे थोड़ो, अरे तू नहीं उठो, थारी आत्मा तो उठने गई ना, थारी बॉडी आठे रह गई। जिधर तुम्हारा उपयोग जाता है, जिधर तुम्हारा उपयोग जाता है उधर ही तुम्हारी अनुभूति जाती है, उधर ही तुम्हारी शक्ति जाती है। आग्रह कर रहा हूं, मैंने प्रवचन के समय कभी क्या आपको बोला कुछ? इतने दिनों से कोई उठता है, कोई बैठता है, कोई जाता है, कोई कुछ भी करता है, कोई बीच में बोलता है, मैंने कुछ बोला आप? लेकिन अभी प्रवीण ऋषि का नहीं यहां पर, ये तीर्थंकर के उस आगम की आराधना कर रहे हो। आज है ये आगम, कर लो, आज से 5,000 साल के बाद ये आगम रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। द्वारिका नगरी वासुदेव अंध कृष्ण राजा धारिणी रानी और गौतम का जीव आया और मां अच्छे सपनों में तन्मय हो गई। शुभ सपना है, जीव का पुण्य मां को महसूस हुआ। चाहे जैसा जीव आए वो अपने आने का मैसेज मां को देता है कि मैं नरक से आया, तिरंजे से आया, देवगति से आया कि मनुष्य गति से आया, और मैं किस लिए आया। एक पल के लिए मां को सपने आते हैं और उन सपनों को जिस मां ने जगा लिया उसके संतति का जीवन जागृत हो जाता है। उस सपने को जिस मां ने भुला दिया उनके बच्चे भी अपना भविष्य भूल जाते, लक्ष्य भूल जाते हैं। मंजिल भूल जाते हैं, सपना मींस मंजिल। इसलिए तीर्थंकर की मां की धारिणी जब सपना देखती है ऐसा, कभी दिन में देखती है, कभी सोते हुए देखती है, जो कब आएगा वो मुहूर्त देख करके नहीं आता है, वो तो उसका वहां का आयुष्य पूर्ण हो गया, दूसरे पल में यहां आ गया। हो सकता कि यहां दिन होगा वहां रात होगी, हो सकता कि यहां गर्मी चल रही होगी वहां ठंडी होगी जहां से वो चला, और वहां की सारी अनुभूति आखिरी समय के अपनी मंजिल के मैं किस लिए चल रहा हूं, और उस अनुभूति उस लेशा उस वाइब्रेशन के साथ जो मां के गर्भ में पहुंचता है तो मां को सपना दिखता है, सोई हुई तब भी दिखता है और जागी रहे तब भी दिखता है, कॉन्शियस रहे तो मां को पता चलता है और कॉन्शियस नहीं रहे तो नॉनसेंस हो गए। दो ही शब्द है, बी कॉन्शियस नो कॉन्शियस बी नॉनसेंस। ये कॉन्शियस रहने के पद होते हैं, और धारिणी कॉन्शियस रह गई। आगम में जिक्र जाता है सुमीना जागरियम जागरती, बोलो बोलो बोलो, वो सपनों को जगाती है। शिव सपनों को जगाती है, दोनों विधियां गई है। शुभ सपनों को सिद्ध करने की विधि गई है और अशुभ सपनों को समाप्त करने की विधि गई है। सपनों को सिद्ध करने के लिए देव गुरु धर्म का संबल लगता है। जिस सपने को देव गुरु धर्म का संबल मिल गया वो सपना सिद्ध हो जाता है, और जिस सपने को देव गुरु धर्म का संबल नहीं मिला वो सपना टूट जाता है। इसलिए आगम कहते हैं कि जिस मां को मां बनने का पल पता चल गया सपनों से, मां सुमिन जागरिय में जागरण उन सपनों को जगाती है, बार बार देखती है, बार बार देखती है, और जब लगता है तो फिर देव गुरु धम्म कर्म कही, फिर वो देव गुरु धर्म की कथा में गीत गाती है। तो सपनों को बल देना चाहिए, और वही बल धारिणी ने दिया। ऐसा बल दिया उसके सपनों को कि जब अरिष्ट नेमी द्वारिका नगरी में पधारे, श्री कृष्ण वासुदेव मां बाप सारे दर्शन के लिए गए, और उसके पहले गौतम की शादी हो गई थी, एक संबंध नहीं भरी जावे, एक ने छोड़ना भी मुश्किल जावे, उसकी तो आठ आठ के साथ शादी करी, और मस्त पाएगी, कोई दुख नहीं जीवन में, कोई परेशानी नहीं, नो प्रॉब्लम, नो इंसल्ट, कहीं पर भी दुख नहीं। तो वैराग्य आता है। हेलो, वैराग्य कब आता है? दुख होता है तो वैराग्य आता है। इन्होंने वैराग्य से दीक्षा नहीं ली, दुख था ही नहीं, दुख था ही नहीं, जिसे थे तंग हो जाओ इनसे, ये तंग हो जाए थका से, वो समय था ही को नहीं। लेकिन तीर्थंकर को देखा और लगा ये चाहिए, ऐसी आंखें चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए, ऐसी समाधि चाहिए, ऐसा संयम का सागर चाहिए, मैं तो जी रहा हूं सुख में, लेकिन समाधि नहीं है। एक ऐसी चाह जन्मी कि जिस चाह के बाद कोई चाह न बचे, और कहा मां को, मां जाना चाहता, और कोई मां पहली बार में माने कटे जावे मैंने छोड़ने, थारा बिना मैं किसी से खुला, जब तक मैं हूं तब तक रह जा, जब मैं नहीं रूला जरा जा जी। बेटे ने जवाब दिया, मां गारंटी कि तू मेरे पहले जाएगी या मैं तेरे पहले जाऊंगा, और देखो ना पहले ही चला गया। धारिणी तो है, गौतम चला गया, और मां के पास जवाब नहीं। दुख सुख की सारी चर्चा कर दी, और बेटे ने जवाब दिया, मां न सुख के लिए जा रहा हूं न दुख से डर कर जा रहा हूं, दुख तो है ही नहीं, सुख की कोई कमी नहीं यहां पर, लेकिन जा रहा हूं तो केवल मृत्यु में जन्म का द्वार न बने। बोलो, मौत मेरे मौत का कारण न बने, मेरी मौत मुक्ति का दरवाजा बने, इसलिए जा रहा हूं। और मृत्यु मुक्ति का द्वार भी हो सकती है, और मृत्यु जन्म और मौत का दरवाजा भी हो सकती है। और मां को लगा के नहीं, मेरे कुख से तो जन्मा है, वापस जन्म मत ले आप, बस बहुत हो गया। अब तो तेरी मौत हो ही नहीं, तेरी मुक्ति हो जाए, ये मेहरबानी है जम्बू स्वामी की। किसकी मेहरबानी? गीता की मेहरबानी की, श्री कृष्ण की नहीं है। गीता श्री कृष्ण के कारण से नहीं मिली, अर्जुन ने होता तो गीता कहां से आती? अर्जुन ने पूछा और गीता का जन्म हुआ। वैसे इस आगम जो तुम्हारे और मेरे पास है, इसका श्रेय ऋषि को है, जम्बू स्वामी को है। उन्होंने सुधर्मा स्वामी से नहीं पूछा होता, कुछ नहीं बचता। जम्बू स्वामी और वो कैसी है, जान दो जम्बू स्वामी को। जम्बू स्वामी को जानते हो क्या? पूछो तब थोड़ा सा हर नाम में गर्दन तो ही नहीं सकते ना, नहीं जानते। वो जम्बू स्वामी जिसका गीत महावीर ने जन्मने के पहले गाया, अनूठा है सारा, सब कुछ अनूठा ही अनूठा है। जम्बू तो देवलोक में, आत्मा देवलोक में, और इंद्रदूत गौतम ने परमात्मा से पूछा कि प्रभु आपके रहते हुए केवल ज्ञानी हो जाएंगे, आपके जाने के बाद कब तक केवल ज्ञानी होंगे, और इस युग का आखिरी केवल ज्ञानी कौन होगा? और इस सवाल में से प्रभु ने जम्बू स्वामी का चरित्र सुना दिया। बोले कहां है अभी? बोले ये बेटा देवता यहां पर है, अभी देवलोक में है, ये आएगा। इंद्रपति गौतम ने पूछा तो आप रहते हुए जन्म होगा क्या आपके पास जन्म? बोले नहीं। बोले मैं रहूंगा तब जन्म हो जाएगा। बोले दीक्षा बोले मेरे जाने के बाद। वो देवता भी सुन रहा है, ऐसी सभा सुन रही। जम्बू स्वामी का जन्म भगवान महावीर के रहते रहते हैं। और दीक्षा पूरा जीवन सुना दिया। कैसी दीक्षा होगी अब तुम पूछोगे? वर्षा भी पहले से तय था तो हमारा भी भविष्य पहले से रहे होगा। अपना लेकिन ऐसा को नहीं है कि अपना भविष्य पहले को तय हो जाए। जो चरम शरीर होता है कौन? बोलो, जो चरम शरीर होते हैं उनका शक्ति होता है। अपन तो मालूम नहीं कई हालात, अपन तो आगे बैठे बैठे चरम नहीं हो गया तक बाकी तो कोई पता नहीं। और वो जम्बू सुना था देवलोक में रहते हुए, लेकिन जैसे जन्म लिया सब भूल गया। लेकिन सुधर्मा स्वामी पधारे, दर्शन के लिए गया और देख करके लगा, उसके पहले दर्शन को जाने के पहले आठ सुंदरी के साथ रिंग सेरेमनी हो गई थी, कही हो गई थी रिंग सेरेमनी कार्यक्रम हो गया था, सगाई हो गई थी, बस लावणी बाकी थी, लावणी तय हो गया तो। और लावणी लाने के पहले दर्शन के लिए गया सुधर्मा स्वामी के लगाने, झंझट में पड़ना ही नहीं है लड़े के। जाए तो धर्मसों में अच्छे, लेकिन शासन में नियम है कि मां बाप को बिना पूछे दीक्षा ले नहीं सकता है। तो कहा उसने कि मैं आता हूं मां बाप को पूछ करके दीक्षा लेता हूं। सुधर्मा स्वामी ने कहा जहां सो देवान पिया थे कि मन में आ रहे तो मैं भी था नहीं बोला जहां सो देवान पिया। तो हमारा सेठिया जी 5-7 साल हो गया, कितना हाल हो गया 5 साल हो गया दीक्षा लेवनी मालूम नहीं क्या टकरे बैठे। चंदू कुमार तो राजा में नहीं अटकी हो किरा में अटकी मालूम नहीं माने बुलिया था पूछ करके पूछने के लिए जा रहा था पूछने के लिए जा रहा था। और जैसे ही राजगृह के गेट पर पहुंचा 10 कदम पीछे था और गेट की सीमा नीचे गिर गई। और जम्बू स्वामी ने सोचा यदि 10 कदम में वहां होता तो दीक्षा तो सपना ही रह जाती है। वही से वापस लौटा, सुधर्मा स्वामी से कहा कि श्रम भगवान दीक्षा लेने के लिए मां बाप की आज्ञा की जरूरत है, लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के लिए मां बाप की आज्ञा की जरूरत है, मुझे ब्रह्मचर्य का आराधना करा। घर छोड़ने के लिए मुझे आपकी परमिशन की आवश्यकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण करने के लिए मां बाप की परमिशन की आवश्यकता। और खबर पहुंच गई घर में, वो जम्बू कुमार सुधर्मा स्वामी कहे ब्रह्मचर्य पचकान ले लिया। खबर पहुंचे में तो देर मिल गई थी ना, अब बार तो सगाई हुई है, ब्रह्मचर्य पचकान लिया घरे पूछो मां बाप को कहा दीक्षा लेनी है, मैं तो ब्रह्मचर्य के बचकन लेकर के आया। मां बाप ने कहा प्रेष्ठित का विषय हमारे क्या विषय बोलो था कभी से वो जा रहे में क्या विषय प्रेष्ठित पॉइंट है बोले मैंने वचन दिया है शादी तो करनी पड़ेगी तुझे ना वचन ब्रेक नहीं हो सकती शादी करनी पड़ेगी शादी के बाद तू जाना नहीं जा। जम कुमार ने कहा ठीक है तुम कहते हैं तो तुम्हारा वचन पूरा कर देता हूं और शादी कर ली। उन बेटियों के बाद समाचार पहुंच गए थे कि शादी कर रहे हैं लेकिन दीक्षा नहीं मनाना है। ये मास्टर ओवर कॉन्फिडेंस आठवीं मीटिंग हुई आठ मीटिंग में तय हुई कि दिखा किसको दीक्षा ने अपना लेते हैं आठवा चक्कर में से किसके निकले देखा मैंने एक नहीं और आठ ने देख किया बोले इसको दीक्षा लेने देंगे शादी कर लेना तो दीक्षा लेने देंगे। और शादी होने के बाद पहली रात और वो कहानियां शुरू कर दी जम्बू कुमार ने कहा दीक्षा लेनी है और पहली शुरू कर दी कहने कटे पागल बन रही उन कुमार जी सो खेत खेती आई सो ससुराल गयो और ससुराल ने मस्त पैकी जलेबी खिलाई और मीठो मीठो लागे और शक लागे मालपुआ बोले क्या है बोले गन्ने की खीरी में शक्कर तैयार थी बोले मैं चक्कर क्या वो खीर करूंगा और घर पे खीरी में बहुत अच्छी थी जहां पर सारी खीरी उखाड़ दी समझाया उस सारे कहा लगा कि यहां नहीं आता गन्ना या गन्ना नहीं आ रहा है वो सुने थोड़ा गन्ना आया नहीं पहली फसल भी गई वो भी गई बोल तेरा भी ऐसे होगा मुझे तूने अभी एक खेती लगाई है इसकी फसल ये बिना तू काट रहा है दूसरा बीज बो रहा है नहीं तू ऐसा ही मूर्ख मुझे जम्मू कुमार उसने दूसरी स्टोरी सुना दी मस्त स्टोरी सुना दी स्टोरी मारे स्टोरी एक स्टोरी एक स्टोरी ऐसे सुनाता एक स्टोरी ऐसे सुनाता तो सीधो कांग्रेस से बीजेपी में चल गई। एक एक कहानी सुना रहा हूं जम्बू कुमार और जो भोगी नहीं बनकर के आई थी कामी नहीं बनकर के आई थी जम्बू कुमार कहती नहीं तुम भी दीक्षा लो मैं भी थक सकती दीक्षा लो
1: मेरे 700 दे दे, बोले प्राण हो गई यहाँ पर, अपना पार्टी में थी, रूसा पार्टी में चले गए, भरोसा नहीं इनको, कभी पार्टी बदली हम भरोसा है क्या? हेलो, एक कहानी सुनी तो मैंने पार्टी बदल दी, पर दूसरी हार थोड़ी माने, दूसरी दूसरी कहानी सुना दी। जब लोग को मैंने उसको और एक कहानी सुना दी, वो कहानी सुना करके उसने पार्टी बदल दी। 16 कहानियां एक रात में, कितनी कहानियां? 8 कहानियां कौन सुनाती? एक एक, और सारी की सारी कहानियों से जवाब कौन देता? जम्बू कुमार। प्रभु आया वहां चोर, एक नंबर का डाकी थी, राजकुमार था, कौन था कौन था? अरे बुरन में बोली तो बोलो, राजकुमार था, लेकिन बुरी सोहबत में लग गया। बाप ने देखा लक्कन ठीक नहीं रहा, हकार दिया, और हकार दिया तो वही आ गया मस्त पै के अपना नया माफिया ज्ञान बना ली, मस्त ज्ञान बना ली, अच्छी अच्छी क्लास सीख गया, स्किल सीख गया, और 500 की टोली कितने की थकन की तरी डिक्ले थी, धके डिकट को नहीं तो से, और खबर पड़ी कि जम्बू कुमार की शादी हो गई है, भेज भरपूर आया हुआ है, और यही पता था जम्बू कुमार दीक्षा लेने वाला है। बोले दीक्षा लेगा तो सारा राज्य के पास जाएगा, तो पहले वही कब्जे में कर आना करने वाला विद्या को नहीं है, लेकिन मालूम नहीं थाने किसके निर जाए। हेलो, उस प्रभु के पास एक विद्या थी, जटे जाओ तो ना सरास हो जाओ, कोई अंतर तंत्र करता है और सब गहरी नींद सो जाते। मैं बहुत बार सोचता हूं यार, मेरे पास वो विद्या तो है नहीं, फिर भी लोग बखान सुनते सुनते सो कैसे जाते? उत्तर मिले हम लोग, उत्तर मिले माने उत्तर 21 मिले कि धारा कहने विद्या को नहीं है, सुनने वाला कहने विद्या सो होगी। तू कुछ भी सुना सो जाए, मास्टर है, और वो सोने की विद्या, बाकी सब सो गया। उन प्रभु देखता है कि ये तो स्टोरी सारा है, स्टोरियां सुन रही है, ये सो नहीं रही है, ये नहीं सो रही है, जागे जागे मेरी विद्या का प्रभाव नहीं हो रहा है। सारे साथियों ने सारा धन इकट्ठा किया, निकलने की तैयारी, ना हाथ ही ले ना पांव ही ले, ना हाथ ले ताको भी सो ही कर दीजिए ना, उठने चाहूं लेकिन मैं पुख्ता रहे। हेलो, मैं नीचे बैठा तो मंगल पाठ हुई ना, तो कम से कम 50% अबरसता है, तो सोने की बात पकोटा नहीं, तो किसी राज किसी चोर का पाव ही नहीं उठे, हाथ ही नहीं। तो प्रभु सोचा मेरी भी तब फेल हो गई, और इसने मेरे पर विद्या का प्रयोग कर दिया। वो सुनता गया एक कहानी, एक कहानी सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, और सुंदरी तरफ देखता गया कि मजेदार बात है, क्या मजेदार बात है। वो तो एक एक को सुन रहा था, प्रभु को सुन नहीं रहा था, प्रभु सुन रहा था, प्रभु को सुना नहीं रहा था, सुना किसको रहा था? हाँ, अपनी पत्नी को, रानी थी, रानी तो राजा जी हुए, वो कोई जम्बू कुमार के राजा रो बेटो नहीं है, वो तो था जी साहब व्यापारी रो बेटो है, श्रेष्ठी रो बेटो है, श्रेष्ठी पुत्र है। वो कहानी वैल्यू सुना रही हो तो वे कामिनिया सर योगिनी बन रही थी, हरी भावना है कि थे भी अंत में सूत्र सुनता सुना योगिनिया बनता हूं। अरे जन्म भी गया कामिन के रूप में जी करे, क्या पाया तुमने? तुरस्त बन करके जी गए भुगे गए भुगते भुगते तुम भी चुप गए। चिप्पड़ हो गए चिप्पड़। बोली ये कमाल की बात बोली, इतनी क्यों छुट करके नहीं, ये भी साथ में योगी नहीं बोल रही, सुनते सुनते उसको भी लगा नहीं।
2: हेलो
1: नहीं नहीं आप भी चोरी नहीं कर
2: ये तो
1: मैं भी जब कुमार के साथ
2: जाऊं
1: उसने 500 साथियों के साथ बात करें
2: हो,
1: दोस्त कैसे होना चाहिए,
2: ये तो
1: मित्र कैसे होने चाहिए। अगर मैं जाना है मित्र की कहानी, जिधर तू उधर में, जिधर तू उधर में, उसने 500 से बात करी। बोले भाई तुमको संभालना, तुम सारा संपत्ति धन तुम्हारा, मैं तो अब जब तुम्हारे साथ आऊंगा, और 500 के 500 ने कहा तू हमें छोड़कर

तो हमें छोड़ सकता है, हम तुझे छोड़ेंगे। तू हमें छोड़ सकता है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। जिस राह पर तू चलेगा उसी राह पर तेरे साथ हम भी चलेंगे। और सेकंड का नजारा क्या बताऊ आपको। अरे लड़कियों ने अपने माँ बाप के पास समाचार भेजे। जम्बू कुमार ने समाचार दिए माँ बाप को कि वो मेरे साथ दीक्षा ले रही है, आठों की आठ दीक्षा ले रही है। माँ बाप ने चक्कर आने वाके लिया उसी कई बात करे बोले भाई आठों की आठ महारा साथ दीक्षा ले रही है। बोले मैं भी थारा साथ दीक्षा लेने वाली। वो आठों लड़कियों ने अपने माँ बाप को समाचार भेजे कि वापस में भी रावला को नहीं गई, मैं चल रहे इधर हमारा नाथ उसी है हमारा साथ, हम भी दीक्षा ले रहे। मैं आठ आठ ने सोलह ने भी कराया थाने तो सुनता सुनता आ रहा है और वो भी तैयार हो गए। क्या नजारा होगा, क्या अद्भुत नजारा, क्या अद्भुत नजारा। 527 बहन का बच्चा है ना, प्रबंधक से जी घनी भावना है, वे बार बार होने के उतर आठ दीक्षा कराओ, आठ दीक्षा कराओ। क्यों तुम्हें अनूठे कहीं नहीं बोलो, अठे बोलो थे नगर में तैयार करो ना थे ताटे बैठे। वे बाहर वाले दीक्षा के आते उन कितने नगर दीक्षा ने बारह माल माते कतक दीक्षा कराओ ना। तो नगर ओरिजिनल माल नहीं निकालने बारे तो 527 दीक्षा। वो जम्बू स्वामी, वो जम्बू स्वामी जब प्रभु के पास धर्म स्वामी पर दीक्षा नहीं पाते तो दीक्षा लेने में चुप नहीं बैठता है, तो चुप बैठो वो नहीं बैठे। वो पूछता जाता है भगवान महावीर के विषय में कि उन्होंने क्या क्या फरमाया, तुमने सुना मुझे सुना, तुमने सुना मुझे सुना, तुमने सुना जो तुमने सुना मुझे सुना, जो तो तुमने प्रभु से सुना है मुझे सुना। और सुधर्मा स्वामी उसको सुनाते थे, एक आगम सुनाया, बोले अल आगम में कहीं सुनाया, पूरा आठ आगम में कहीं सुनाया, पूरा आगरा आगम में कहीं सुना। बोले जो जो तुमने प्रभु से पाया है वो मैंने उनसे लेना ही लेना है। ऐसा जम्बू कुमार, ये जम्बू कुमार ने सुधर्मा स्वामी से पूछा। सुधर्मा स्वामी ने ये श्रुत देव जम्बू स्वामी को प्रदान किया और प्रभु ने कहा था कि तुम सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, वापस तुमको जन्म लेने की जरूरत नहीं। उस वचन पर इतनी लेवल पर श्रद्धा, इतनी लेवल पर श्रद्धा, इतनी अंतिम क्षण तक श्रद्धा। एक बार भी अरिशन को जाकर पूछा नहीं, आपने कहा था ना अब तक तो हुआ नहीं, आपने कहा था ना अब तक तो हुआ नहीं, आपने कहा था ना अब तक तो हुआ नहीं। आठे के लिए बताओ ना कैसा है मार सब थे क्यों तो ना अर्जुन तो युद्ध को नहीं अंतिम क्षण तक जो नेह गिफों में जीते हैं वो अंत दर्शन सूत्र के नायक बनते हैं। ऐसे 10 सिद्ध नायकों की कृपा मेरे पर बरसे, आप पर बरसे और हमारे भी दुखों का, कषायों का, वासनाओं का, विकारों का अंत हो जाए। एक ही भावना भाएंगे कि जैसा तुम्हारा वह है वैसा हमारा हो जाए। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आज के पाठ का मंत्र क्या है, नेवर गिव अप। धन्यवाद आपको कि आप समय पर आए, वो थोड़ा सा हाल के बना दिया।

0: पर आए। धन्यवाद उन बहनों को जिन्होंने ड्रेस कोड को फॉलो किया। आग्रह उन बहनों से जिन्होंने टाइम का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया।
1: कार पानी टाकू तो ला तो गरम टाका
0: है। ये उसके साथ ईमानदार बनो। एकता एकता दुखरी अंतरी आराधना करो वैने छोड़ने या ताकि ईमानदारी है। हेलो वैने दुखरा रास्ता माते छोड़ने थे आठे आराधना करो या ईमानदारी है कि मस्त पाई के आठों घरे जाए ने उनको माथों पकड़ जो उनका चरण पकड़ जो उनका हाथ पकड़ जो बोलना काले थाने साथे चालनोच पड़ेगा। बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितने इधर उतने बोलो ना। ये क्या एक पांडा भारी एक पांडा नीची। जिन शासन संतुलन का है जिन शासन संतुलन का है बैलेंस होना चाहिए और बैलेंस आप कर सकते हो होना चाहिए। आपको नहीं लगता क्या कि आप पर वर्षा हो जाए ऐसे सुखे रह जाए अच्छा लगे? ये कोई तुम्हारा प्रेम है क्या है? इसको प्यार कहते क्या? स्वयं तो मस्ती से तीर्थंकर का वानर रस पी रहा है अनवैने भेज दिया कमावने। कल उनको साथ में लेकर के आना लाएंगे क्या? जिन्होंने जिन्होंने नहीं लाया उनको पूछ रहा, जिन्होंने लाया उनको धन्यवाद, जिन्होंने नहीं लाया उनसे आग्रह कि काने की सच कर बने कि मारसा में सुने इसको नहीं। एक जंबूकार आठ जना ने सुनाए देवे इतना सुना उनका मास्टर एक ने नहीं सुना सको एक घंटा के लिए और जगो थको सुन नहीं सके उड़ा सके थे जगो के ने ये कोई गणित थोड़ा होता है ना। बीजेपी में रहना नरेंद्र मोदी के लिए सुनना ऐसा चल सकता है क्या? बीजेपी में बिल्कुल चला ही नहीं लो या तो सुन या पार्टी छोड़। और जिन जिन बहनों को सफेद साड़ी नहीं मिली होगी उनके लिए बंधु का नाम तो नहीं आया मेरे पास पर दिलीप दिलीप साड़ी 8530639409 जितने रोड पर इनकी दुकान है और उन्होंने एक भावना व्यक्त करी है। इन्होंने ओरिजिनल कीमत लिखी नहीं है पर पांच प्रकार की साड़ियां उपलब्ध है। कितने प्रकार के? मुझे चॉइस अवसर है ना अवसर है चॉइस रो कीमत उसने उतनी रखी है जो उसको लगता है जो उसने अपने ओर से करना किया ना साथ में देखा है या तो 350 दे या फ्री में ले जाए कहना वो धारो ए वो 8000 दू ए बाकी सर 8000 कहना उतारो। डॉक्टर डॉक्टर महावीर गांधी ये मुट्ठी मुट्ठी कर ले इसकी ओर से कले शाम का दौड़े दौड़े मारे कहने आए बोले मैं समझ ड्रेस उन गांधी ने दिया है तो साड़ियां मैं दे दू। मुझे तिपाली गांधी कटे जी अच्छा ये सारी जानकारी इधर से आ रही है। इन दोनों ने जोड़े से गुरुदेव के जन्मदिन पर अठाई करी है और वो बहन है खड़ी दुकान उसकी है ईमानदारी देखो कितनी है ना? थे भी ऐसा ईमानदार बोलो तो अच्छे लगे ना? देखो हमारे भाई कितने ईमानदार होते हैं। तो बहन खड़ी है ऐसे मैंने उनको संकेत किया है कि वो यही पर लाकर के उपलब्ध करा दे तो चित्र रोड तक काम न जाओ तो काम नहीं पड़ेगा। जिनको 350 देकर के लेनी है 350 देकर के भी ले सकते हैं, जिनको लगता है कि नहीं अपना पर पैसा नहीं खर्चना है तो फ्री भी ले सके, दोनों ऑप्शन उनकी तरफ से खुले हैं। तो कल पूरा आवर जो जो बाकी है वो भी पूरे हो जाएंगे इस बात के साथ। जम किंची मिच्छाए मन दुकड़ा बे दुकड़ा का दुकड़ा को हाये माना ये माया ये लोहा ये सब का नए समय चुराए सब धम्माई को ना जो मैं देव से आया रुको तस कमा सुनो बड़ी कमावी निंदा में गरे आने अप्पा नम ओसरा में। केवल 2 मिनट में सूचना दे रहा हूं, दोपहर में 2 से 3 कल्प सूत्र की आराधना यहाँ होगी, 3 से 4 अलग अलग प्रतियोगिता है, 4 से 5 आनंद धाम पर, 4 से 5 आनंद धाम पर आपके जैन जी के लिए जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनके लिए 4 से 5 अंतगढ़ सूत्र की आराधना बच्चों के लिए होगी। आग्रह इतना ही रहेगा, आग्रह इतना ही रहेगा, बच्चों को भेजना तुम मत बैठना, हे सामने दिया ना तो फिर बच्चा मैं सदै बात नहीं कर सकूं, आप उनको भेजिए 4 से 5 उनके लिए रहेगी। रात में यहां पर नाटिका भी है ना, 12 बजे रात को 12 बजे नाटिकाओं का क्रम चलेगा, और साथ में 9 से 10 रात को 9 से 10 ऑनलाइन, 9 से 10 ऑनलाइन परिशन पर्व फॉर जैन जी, परिशन पर्व नहीं करो उनके साथ अठे, कौन मना करो, नहीं अठे वो तो ऑफलाइन नहीं करे, वो नहीं ऑफलाइन नहीं करे, ऑफलाइन यहां पर भक्ति संध्या आदि कार्यक्रम यहां पर होंगे, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, कहां बोल रहा हूं ऑनलाइन, जिनको भक्ति संध्या का आनंद लेना हो यहां आएंगे, जिनको ऑनलाइन का आनंद लेना है और ऑनलाइन केवल नगर के लिए नहीं होगा ना, नगर के लिए रहेगी, ऑनलाइन जैन जी के लिए है परिशन पर्व फॉर जैन जी, और आज का सब्जेक्ट है और जैन जी के लिए ब्रेन रॉट वर्सेस ब्रेन रेस्ट, ब्रेन रॉट वर्सेस ब्रेन, धन्य नहीं समझे से रॉट तो थे समझे मत, मैंने भी समझने 2 दिन लग गया है, मैंने कल भी पूछा क्या है प्रकार, बोले ब्रेन रॉट का मतलब होता है दिमाग सड़ गया, और जैन जी इसको प्रयोग करते हैं कि ये बार बार 30-30 सेकंड के रील देखते देखते दिमाग, तो उसमें से बाहर आना चाहते थाने भी यदि आओ ना हो तो ऑनलाइन आ सको, पर भावना चाहिए जैन जी वाले के कार्यक्रम में आज का ब्यासना वाले खड़े हो जाए मंगल पाठ के पहले ब्यासना के पचकर
2: मंगल
0: मंगल पाठ।

0: हाँ, श्रवण चरित्र के पहले इनमें से किसी का पालना नहीं हुआ ऐसी भावना भाना है। मैं जो वर्षी तप कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा एक अठे हो चुके अब गड़बड़ मत कर दे। उपास
1: गुरुदेव की आज्ञा हो गई श्री अपने चंद्र जीवन में की ज्ञान के धर्म अनत्ना मगिनम दोषा करने मोत्र नाम समस्या योग्य करने वस्त्र
0: अठे के भाव रखने वाले को आप गेट खोल सकते हैं। आप जो भी कार्यकर्ता है गेट खोल सकते हैं।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

बेशक गजब है पैसों की ये हवा जनाब, जेब में बटुए में भी आ जाए तो वो भी सीना तान के फूल जाता है, तो इंसान को क्या कहिए। पैशाची माहिती एका हास्य कवीने त्याच्या एका हास्य कवितेद्वारे अतिशय सुंदर मजा ऐकण्यात आली। मित्रांनो, किसी ज्योतिषी से ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपका भाग्य कैसा है, आप बहुत भाग्यशाली है अगर आपके जेब में पैसा है। ये बात हर आदमी ने मानी है, पैसा हो तो सारी दुनिया आपकी दीवानी है। ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, पैसा है तो दुनिया में आप ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे, पैसा है तो सेवा करने के लिए सेवक मिल जाएंगे, पैसा है तो बिना शादी के सबके बाप बन जाओगे, और पैसा है तो बड़े बड़े समारोह के मुख्य अतिथि भी आप बन जाओगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा, पैसा है तो चुनावों का टिकट भी मिलेगा। कितना भी जुल्म करो लेकिन लोग कहेंगे कि आप बहुत सीधे हो, पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। पैसों से तो सावन भी आ जाता है और घास हरी मिल जाती है, पैसा हो तो गधे को भी परी मिल जाती है। रोज खाने में आप ही मलाई चाटोगे, पैसा हो तो उद्घाटनों की रिबिने भी आप ही काटोगे। पैसा हो तो हर काम में आप दक्ष बनोगे, समाज में चाहे कितने भी दूसरे विद्वान हो आप ही समाज के अध्यक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको जरा ज्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि सर पे बाल नहीं है, आप टकले हो। पैसे होंगे तो जीवन में ना कोई तकलीफ होगी ना कोई झगड़े मिलेंगे, पैसे होंगे तो आपके दरवाजे पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। बाप रे बाप, ये बहुत ज्यादा हो गया नहीं क्या दोस्तों? पैसों की महानता बयान करते करते मेरा मुंह सूख गया दोस्तों। याच्यासाठी म्हणतो की हे परमेश्वरा, एखादं लॉटरीचं तिकीट आमच्यासाठी पण तयार कर रे।

0: मिली थी 4 दिन की ये जिंदगी, मगर पूरी उम्र गुजार दी चंद कागज के टुकड़े कमाने में। उम्र भर ये समझ ना पाए, ना कफन को जेब होती है, ना कब्रस्तान में अलमारी होती है, और ये मौत के फरिश्ते कमबख्त रिश्वत भी तो नहीं लेते। गुड बाय दोस्तों।
1: को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा।
2: नगरकर अच्छा दिलबंद गाणी या कार्यक्रमाचा विषय होता ये पैसा है कैसा, आणि हा कार्यक्रम सादर केला ऑल इंडिया रेडिओचे दूरदर्शनचे संहिता लेखक निवेदक संगीत समीक्षक सुहास भाई मुळे यांनी। आता वेळ झालीये इथेच थांबण्याची, पुन्हा भेटूया पुढच्या शनिवारी दिलबंद गाणी या कार्यक्रमात। तोपर्यंत ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।